आकाशवाणी इम्फाल ngasi yumsa kaisanumit august kitang kuntaro thawan gitaraum doini panba sakap telishinga machamapan nifuni pan yai farabanumit asigi ayuki pung manga makhai taki wagaloinana आकाशवाणी इम्फाल गी एफएम संगाई चैनल गी थोरम सिंह संदोक पहुचरी संदोक चरी बा मेगा हर शाम अहुम दासमिक मंगानी थोरम ताबी रिब सिंह बो तराम ना ओक चरी नौलुक चरी लोइनना याई फरब नुमित अमा ओय मिनरसी

0: हमारे भारत में अनेक महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं। हमारे मणिपुर राज्य में भी अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अनेक वीर पुरुष हुए हैं। इसलिए भारत को अनेक वीरों की जननी कहा जाता है। भारत के कुछ महान वीरों के नाम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि हैं। मणिपुर के कुछ वीरों के नाम हैं वीर तिकेंद्रजीत, थंगाल जनरल, पोंगना ब्रजवासी, चिंगलेन सना तथा हीजम इराबोत आदि।
1: बेमा,
0: हाँ
1: तुम क्या पढ़ रही हो? कई लोगों के नाम भी हैं।

0: मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी।
1: अच्छा,
0: जो मैं पढ़ने वाली हूँ ये वो लेशन या वो पाठ नहीं है पिताजी।
1: तुम जो पढ़ने वाली हो उस पाठ का क्या नाम है?
0: पिताजी, उस पाठ का नाम है आजाद हिंद फौज। आप जब बाहर आएंगे तब आपके साथ पढ़ने का सोचा था,
1: अच्छा,
0: इसलिए आपका इंतजार करते करते मैं दूसरा पाठ पढ़ रही थी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी दीदी ने भी मुझे आजाद हिंद फौज के बारे में लिखकर भेजने के लिए फोन पर कहा था।
0: अच्छा,
1: बहुत बढ़िया, अब एक तीर से दो निशाने का काम हो जाएगा।
0: कैसे?
1: अर्थात तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी दीदी का काम भी हो जाएगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाऊंगा और तुम अपनी दीदी के लिए इसके बारे में लिखना। लिख पाओगी ना?
0: क्यों नहीं पिताजी, ये तो बहुत आसान है। पिताजी, आप मुझे अच्छी तरह पढ़ाइए, फिर मैं लिख लूंगी।
1: अच्छा, बताओ आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी?
0: ये तो बहुत आसान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी।
1: शाबाश, मेरी बेटी तो बहुत सयानी निकली। अच्छा बताओ, इसकी स्थापना किस साल और किस तारीख को हुई थी?
0: वो तो मैं भूल गई पिताजी, मैं बता नहीं पाऊंगी।
1: तो सुनो, मैं बताता हूं। आजाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी
0: अच्छा,
1: और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
0: पिताजी, आजाद हिंद फौज का मणिपुर में प्रवेश कब हुआ?
1: आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को म्यांमार की ओर से मणिपुर में प्रवेश किया था। इसका नेतृत्व कर्नल शौकत अली मलिक कर रहे थे। वे अपने सैनिकों के साथ मणिपुर पहुंचे थे। उन्होंने 14 अप्रैल 1944 को मोयरांग में तिरंगा झंडा फहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
0: पिताजी, उस समय मणिपुर भी अंग्रेजों के अधीन था ना?
1: हाँ, बिल्कुल सही। उस समय मणिपुर भी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने जब भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तो धीरे धीरे उन्होंने मणिपुर को भी अपने अधीन कर लिया। स्वाधीनता प्रेमी मणिपुरी जनता ने आजाद हिंद फौज की खुले दिल से सहायता की थी। हेमाम थंबालजाओ सिंह ने आजाद हिंद फौज का कार्यालय बनाने के लिए अपना पुश्तैनी घर दान कर दिया था। इस बात की चर्चा आज भी मणिपुर के लोग करते हैं। अन्य लोगों ने भोजन की व्यवस्था करने और सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य किया। उनसे जो बन पड़ा उन्होंने उसी प्रकार आजाद हिंद फौज की सहायता की।
0: मणिपुर के लोग बहुत दयालु और देशभक्ति है ना पिताजी?
1: हाँ,
0: उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की सहायता की थी। वास्तव में हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है।
1: हाँ,
0: कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी माता है और मातृभूमि से बढ़कर हमारे लिए कोई स्थान नहीं होता। पिताजी, मैं जो कह रही हूँ क्या वह सही है?
1: बिल्कुल सही मेरी बच्ची।
0: पिताजी, आगे की कहानी सुनाइए ना, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
1: तो सुनो, अब आगे की कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनना।
0: हाँ हाँ जरूर।
1: जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी इन बातों को हमेशा याद रखना।
0: हाँ पिताजी, मैं ध्यान से सुनूंगी। स्कूल में भी गुरुजी कहते हैं कि मैं बहुत सयानी हूँ और पाठ को हमेशा याद रखती हूँ।
1: अच्छा, तो तुम मेरी सयानी बेटी निकली।
0: हाँ।
1: सुनो, आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में तो बता दिया ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले

0: जापानी सेना ने सिंगापुर पर विजय प्राप्त कर ली, तब युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के अधिकार में सौंप दिया गया था।
1: पिताजी, हमारे देश के सैनिक अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं ना?
0: हाँ,
1: वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं।
0: हाँ मेरी बच्ची, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे।
1: हाँ वो तो है।
0: उन्होंने भारतवासियों का भला नहीं किया, बल्कि भारत को अपने अधीन रखकर उसका शोषण किया। इसलिए भारतवासियों के मन में उनके प्रति गहरा रोष और नफरत थी।
1: हाँ।
0: लोगों ने संकल्प लिया था कि एक ना एक दिन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। नेताजी ने महिलाओं की भी टुकड़ियां बनाई और उन्हें प्रशिक्षण दिया।
1: अच्छा।
0: इन वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए पूरे दिल और जान से काम किया। चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सबका एक ही नारा था।
1: पिताजी, वह नारा क्या था?
0: उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद।
1: अच्छा।
0: और आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इन नारों से उस समय आसमान गूंज उठता था। महिलाओं की इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था और इसकी कमान कप्तान लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। बहादुर लक्ष्मी ने इन महिलाओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया।
1: पिताजी,
0: हाँ हाँ,
1: क्या लड़ाई में नेताजी सफल हुए थे?
0: नहीं, पूरी तरह से सफल तो नहीं हुए, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को प्रज्वलित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उन्होंने भारतवासियों के दिलों पर विजय प्राप्त की थी।
1: तो पिताजी, उनके असफल होने का कोई कारण तो होगा?
0: हाँ, इसके कई कारण थे। सैनिकों को बहुत दूर से आना पड़ता था। कई सैनिक बीमार हो जाते थे। खाने और हथियारों की कमी थी। इन्हीं कारणों से वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए।
1: अच्छा।
0: कई सैनिकों के बीच रास्ते में मृत्यु हो गई और कुछ तो अपने घर लौटना पड़ा। इसलिए नेताजी अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके। नेताजी का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था।
1: वो क्या था पिताजी?
0: ये, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई और इसी कारण नेताजी आज भी लोगों के दिलों में अमर है।
2: इबे माँ, अब तो गला सूख गया होगा। बाबा से पूछो कि क्या मैं चाय लेकर आऊं?
1: जी माँ। पिताजी, माँ चाय लाने के लिए पूछ रही है।
0: हाँ क्यों नहीं, अच्छे अच्छे सिनेमा घरों में भी सिनेमा देखते समय इंटरवल जरूर होता है। माँ से कहो कि वह चाय ले आए, गला पूरी तरह सूख गया है।
2: चाय आ गई, ये लो, ये आपके लिए है। बेमा, तुम्हारे लिए ये रहा, गिर न जाए, ठीक से पकड़ना।
1: पिताजी, देखो माँ की चाय बहुत गर्म है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रही है।
0: हाँ मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही कहा, चाय बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ चाय बनाने में अव्वल है, सचमुच बहुत अच्छी चाय बनी है।
2: अच्छा, मैंने नहीं, ये तो मसालों का कमाल है। दूध भी बुआ थरो की गाय का है, जो बहुत अच्छा दूध देती है। और
0: अच्छा?
2: चाय की पत्ती भी खुशबूदार वाली है, इसलिए चाय इतनी बढ़िया बनी है।
0: सुनो,
3: जी?
0: तुम थंबो के यहाँ शादी में नहीं गए थे ना?
2: अरे मैं भूल गई।
0: अरे
2: परसों तो बात हुई थी ना, मोहल्ले में शादियाँ एक साथ हो रही है, इसलिए सुबह शगुन दे देंगे, भूल गए क्या?
0: हाँ हाँ ठीक है, मैं उनके यहाँ होकर आता हूँ। तुम इबेम के साथ रहना और उसे थोड़ा पढ़ा देना।
2: जरूर,
0: मैं चलता हूँ।
2: हाँ ठीक है, पैसे तो

0: ना तुम्हारे पास?
1: हाँ, थोड़े बहुत हैं।
0: बीमा?
2: जी माँ।
0: बाबा चले गए, अब तुम मेरे साथ पढ़ो। कहाँ तक पहुँचे?
2: माँ देखो, आज का हमारा पाठ है
0: हाँ?
2: आजाद हिंद फौज।
0: ओह, ये मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है ना?
2: हाँ माँ। मैं कुछ पूछूँ माँ?
0: बोलो।
2: आप जवाब दे सकोगी?
0: अच्छा, पहले प्रश्न तो पूछो। प्रश्न सुनने के बाद देखेंगे कि मैं जवाब दे पाऊंगी या नहीं।
2: तो माँ बताइए, आजाद हिंद फौज का आदर्श क्या था?
0: ये तो मुझे पता है।
2: अच्छा?
0: आजाद हिंद फौज का आदर्श था एकता, विश्वास और त्याग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में इन आदर्शों को अपनाकर काम किया और लोगों को देश की आजादी के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी।
2: माँ
0: हाँ,
2: नेताजी ने भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था ना?
0: हाँ बोलो।
2: वह है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सही है ना माँ?
0: हाँ सही है, नेताजी ने ये नारा देशवासियों को दिया था। देशवासियों ने ये नारा लगाया।
2: माँ मैं समझ नहीं पाई।
0: ठीक है, मैं समझाती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में सैनिकों की भव्य पैरेड की सलामी ली और इतिहास प्रसिद्ध नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। आज भी ये नारा भारतीयों के कानों में गूंजता है।
2: हाँ माँ, अब स्पष्ट रूप से समझ गई हूँ। उनके बचपन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए ना।
0: बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिताजी उस समय के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई।
2: माँ क्या वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे?
0: हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था वह उसे अच्छी तरह याद रख लेते थे। लगभग हर परीक्षा में वह अव्वल आते थे। बाद में उन्होंने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा भी पास की।
2: तो क्या उनके पिताजी का सपना पूरा हुआ?
0: हाँ हुआ, वह एक उच्च पद पर नियुक्त भी हुए। लेकिन वहाँ उन्हें अंग्रेज सरकार के अधीन काम करना पड़ता था। उन्हें ये स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद उस पद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों की गुलामी से घृणा करते थे।
2: तो माँ वे इतने प्रसिद्ध क्यों हैं?
0: क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और
2: तो
0: देश को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण उन्हें जेल में भी डाला गया।
2: अच्छा, ऐसा भी हुआ था?
0: हाँ, वह कुछ समय तक जेल में रहे, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया। उनके घर के चारों ओर अंग्रेजी सेना तैनात थी। वह बहुत चतुर थे और अपनी बुद्धि, साहस तथा योजना बनाने की कला में निपुण थे। नेताजी लोगों की नजरों से ओझल हो जाने में भी माहिर थे।
2: तो माँ फिर वे कैसे अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से बचकर बाहर निकले?
0: इनके लिए ये मामूली सी बात है, कड़ी निगरानी और अंग्रेजी से।
3: रेडियो क्लास ताबिरे थरोमसी की चामरी हुम्फोहुमदोई सुबह तांकक्ता क्लास एट की हिंदी लेशन तरातरेट थरोमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांगलोइनना संदोकचब थोरमनी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोकचरी खोंजल नाचोम।

0: फजल, आई नारंग दगी नंबु निंथी नुमाइना साउ तो ओइसु यादि लारिक सु निंथी नुमाइना पाते हाय नंबु नसा नुमाइ द्रब्रने
1: कसु दौ दे दै तो
0: हायो करिनो नंग द नुमाइ त्रिबे तो करिनो
1: अदो ब्रो
0: हायुने हायुने
1: हयेंग भारत के निंग तमनुमिनि दना
0: मानी निंग तमनुमिनि
1: आइ खोइ स्कूल गी महिरोइ सिंगी लाय ब सांगदम न बगी थौरम म ओजा सिंग न सिले
0: अ अदु द नंग सु याउ दुरि ब नत्रो
1: याउ गे खलम ने अस अदो तले तो लनि दा
0: ए करी की तो कदोरी बा याउ गु दब नि कैनो ने
1: मिने आम नुक न खिनि दै तो तले तो लनि दा
0: नंग न लाय ब याउ ग मिने नुक न दोरी दि करी गे
1: आइ न जाति गी फिरान ये कनि हायरु बदा अदुदी क्लास वन के गांग ये कदब निहाय दुना मखोय म्यान नुक्षी लगली बनी ने
0: अदु अदु की वेरे नंग ना नमाय कदु गांग सिल लदना नुगाय त्रिप दो हजल इतो नहाय के मुनताओ आई खोय की जाति की फिरान दगी हेन फजबा हेन वहन थोक ले बपोट अमा माले मिस्ते ले बनत तेने
1: अदुदी आई जाति की फिरान ये पयार निको इतो
0: ये कदब ने भारत की निंग तेंब नुमित्ता भारत जाति की फिराल येक पदी ओंधोक न वाहन ठोक लेना फज्ज करे न करीनो ताई येक रिंगे दा नंग न खन ग दब वफम अमदी लेको
1: करीनो इतोन
0: नंग न येक दब पोसक अदुगी नुंग ओयबा वाहन ठोक हाना निंग थी न खंग दब होत न ग दब ने
1: इतोन अदु दी आई दी कमाई दाउ नी आई दी करी मत सुखांग दे जाति की फिरान की मरम दा आई न खंग बहाय रगदी
0: हायो हायो
1: मचु अहुम सुई मथक इथंग थंग बदा गिरवा मचु मयाई दा अंगो गो मचु अदुगने इतोन मखा इथंग थंग बदा असंग मचु ने अशितनी
0: अदु सुपी कै दोरगे नंग न पंगपा दे हेक पाखत लदना आई न खंग न नबा नंग न खंग दब सिंग दो लोय न ताका दोरि बनि ने से आई हाय गे मुन ताउ को

0: गीतांजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।
1: अरिजीत सिंह की खोंजल लगी गीत हम ताबिरे मथंग दमुक तामिन से संजू राठौर अम दिमाग के कांगबू दगी गीत हम
2: रानी गुलाम ने नहीं राजा ने मिला करे।

0: tokai tokai thambi patna tana ima ga pabung ga sak phaw ba unahanda ba
1: pabung ni ima gi masak uning bana wal ki aho ba ko thi thi duna yeng na ba hot na ba do ai yeng ba yam nuai ti mai ta so ima se ai khoi de kausil laga thambi ra si ba
0: aduna parani thasa aduda mu ai khoi ai me khoi ni yar loidra asini ai na khali bas
1: ya na ba haina ba tare da na kani kum ba yatra ga na moi de pabung se thambi yo ha ra si
0: pabung du bu asi sak sak khra bra
1: sanding de de na asi su sa thri
0: o
1: pamung da gi su ko ga ti ha ye ni doctor da amuk ta pura ga yin tho pi ru se
2: loi bu kana kana halai ge achauba achauba
0: pabung netra ai bu kauri se kai ta ora sa na ai lao amuk ta salu si
2: ayo ayo ai bu ya mu are dai cha sa
0: babu kai ta ora ke babu
2: achauba babu tabak si am nai ne so su hon ba se ya mu ai ne
0: kai su ta ora de babu tabak ta tam le bu kuse amuk ta lo thopi
1: kai no babu ki tabak si bu मुसिन मदों न तौद्र
0: होइनी मोबाइल मै तो अब त कब लुसे
2: आइ आइयो हाय हाय थेंग कनु नोय बो याम नाय ने आइबो
0: के के नु सिदि हाय थाबा सियाम न मुसलिन
1: तु मदों न सुतौ येमी सिबो इ सिबो संग मामाली ने
0: सिदि कम दोनी थाजा फिरोल दु करलो सेलो डाक्टर सने बम त तौसे
2: आ चौबा
0: बाबु
2: आइबो बाबु नमादो अमुक नदी उननि ने
0: होय बाबू आइ आइ इमा करोगे बाबू थाजा फोन फोन की सोदो कदाय दे लेगे
1: देवन पिता मा खा दे लेबने
0: आइयो कदाय दे लो कदाय तो मा ले हरि सिंह
2: आइयो
0: ओ ले ले ले हां
2: आइयो
0: याई मा नंग गाड़ी तो थदो न बा मुत तो बाबू इमा लाए
2: हां
0: इमा लाए
2: न मा ला कदाय तोंबिया tombi
1: mai babu nang bukai dauraki
2: ai kashu tau deda ai kari gi kapi bano ai kari shu tau roine
3: babu nang kai dauraki nang na bro
2: nang len babu kashu tau dine babu gi nak ta phamula
4: taso gari thongdore chana ba taurasira
0: hoi hoi
4: ai leima noibu puna ba phirol ka tu losila bro
1: loi loi re losile
0: ai aduti gari da hapsilo dana
4: ho hoi ta ai hapsilo ge
0: ai ai babu doctor chana ba tausi hawat piro
2: se
0: babu
2: ipa thoi do pa kash to dre da khar phar ngoi nasi di theng su theng hai eng do anta chatla sine cha cha
4: babu haujik chatpana phani da babu se chatna bataw ro si se khoi to kon bi ro se babu se
2: ngon da nongai traga ne ipa hore ne haira ki se haujik ti chatla gum si
0: babu
2: noi shu patha jaru ro pa kasu taw ro roi da
4: babu
0: atu ti ima di ima पाहुंगे मनात सुम ले बिरो होरे नुंगा इरेक्टर ग हेता है बिरो
4: लंगले चल सिला ओदना
3: आई दी पुपु गे मनात ले होरगे पुपु द वारी ली हंगे पुपु वारी ली व्यू को
2: होय होय होय आई तारा बरा ना होय इशु से ले जा होर सनो
0: अदु दी पाबुं ए खोय मुख थोगे याईमा नखोय असोम मनिं कादम त संग लको है वारी मत ताना खिसे
4: होय होय ताचो मा आइ ताचो गि मना तुम त संग खि गि मा
1: होय होय होय सनो र
4: ला ला ले मा
3: बुबु वारी लिबिरो बुबा नसु सिदा का खन ओ ला ओ ला ओ ला ओ हाय बने
1: होय नि होय नि होय नि सिंग नु ने बुबो कर के पाबुं तुम थरब रो नंगबो
2: तुम देदा आइको थोसरा
1: थोंगना बताउरसे

पाबुंग बना हाकी नुशी थौरी ना पुनबी खिबा निंगोल थमोइना लापना ख्रबदा काइना ख्रबा महाकपु ततना निंगसिंगली निंगसिंग बसिनासु हेना वाहन बिरे निंगसिंग दबरा नहाकती मतम दुगी नुशी वारी आइखोय अनिगी सेंगलाबा नुशी मारी थदतुना लंगथोपिरामी नहाक नदी करिशु लेत्रबा मचोई तारबा लैनागु निंगसिंग बना हाकना निंगोल थमोइबु ततना वाहन बिरे निंगसिंग निंगसिंग महाक तगी सक्तम वा न खांगली बसे एहाक तरा

0: 아가씨 반인 팔 하우스 눈밑 눈물이 봉따라니 토이 다리 많이 뿌리다 바오 다비라시
1: आकाश बनी इम्फाल नई नई देवी ने पाव पाजरी अहमद मरुआई बपाव प्रधानमंत्री ना हायरी मरुआई बा ट्रांसपोर्ट अमसों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंह पाइकट पर मतमदा सेक्शन तवरंग कया लोकत पतंगाई फदे प्रोफेट मोहम्मद की मपोक नुमित इट ई मिलाद उन नबी नसिलेबक सिंब तुंग पंग थोकली गृहमंत्री अमित शाह ना हायरी लम खुदिमक्त मंगजिल थानबगीदमक लैबा कसिना इंटरनल सिक्योरिटी मपांगल कनकट अनबा तंगाई फदे अमसुंग लैबाक असिगि सोशल सिक्योरिटी अमसुंग ये फतहरंग स्कीम छिंग प्लेटफॉर्म अमद फंगनबगि पांदम द सेम किबा ई श्रम पोर्टल ngasi jahi manga mapung phare रेलवे रोड अमसुंग पावर सेक्टर का मरील एनना पैकेट पर मरु ओबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तरुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यंग छिनखरे न्यू दिल्ली दलेबा सेवा टर टप ngarang pangto pa yang khai hundoi chungba प्रगति की मिफम द सभापति होने सरुक यारदुना प्रधानमंत्री ना हाई मरु ओबा ट्रांसपोर्ट अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग पैखट पर मतमदा सेक्शन थौरंग का यालो खत पतंगाई पते प्रोजेक्ट सिंग असि लुपा कोटि लि सिंग कुंथ्राई हेना चंगनबा चंगन पैखट पनी अमसुंग मजिदा लेबाक असि गि राइज निपान कोनसिली प्रोजेक्ट सिंग अजिना लेबाक असि दा कनेक्टिविटी हेना मपांगल कनकन अनबा उद्योग अमसुंग सेल थुंगी थबक थौरम हेना खुमांग जाउसिन हनबा अमसुंग मियाम द सथोक जाजिन द चाउन खुदुंग चाब पीरगनी श्री मोदी ना मंत्रालय अमसुंग राइज की मकोक थोंब मीय सिंगदा असिगुंब प्रोजेक्ट सिंग पाइखटपदा सेक्शनब अमसुंग हौरपगी तंकक असिदगी अहुना कुपना यिंगसिनब खंगनकी मतंग चुनरब टेक्नोलॉजी कया सिजनदुना थबक मपुंग फाना मदि क्वालिटी लैना पाइखन अब प्रधानमंत्री ना मंत्रालय अमसुंग मरी लैन बाय एजेंसी सिंगदा पौताक पीखे प्रोफेट मोहम्मद की मपोक नुमित इट ई मिलाद उन नबी ngasi lebak sinba thungna

दोस्तों अगले गीत के लिए फरमाइश आई है वंखई से रंधोनी तोंबी इनाउबी और सना तोंबी का. इसी गीत को सुनना चाहते हैं बासिखोंग से रंजीता जमुना और भानुबी.

दोस्तों अगले गीत के लिए फरमाइश आई है थंगमेबन पोलेमलेकाई से आशा ने, और ये सुनना चाहते हैं इश्क विश्क फिल्म का टाइटल ट्रैक जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, 13 सापम लैरक से नोमाइथे मेमचा ने तेरे नाम फिल्म का एक गीत सुनवाने की ख्वाहिश की है और इस गीत को वो सुनना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। उनके नाम है मेरीना बीरेन, जो है 13 सापम लैरक से, और 500 पार्ट 2 से सुबदनी, तोप से तोंदोनबी और बिजोई गोविंद से सुनंदा। इस फिल्म के गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

आकाशवाणी इम्फाल हौसी का मुक्लांतक चरी अरीब फिल्म मदी मतम इशय मथंग मथंग ओइना कुदल के अहम दलो बिरसी लाइश्रम मे मदे की मतम इशय मा सैरिंग सरत अरामबम सैहौना सुमना सैहौरी नंग न ओलांग थानी आईगी

0: Western Music ki thoram tabiri Akashvani Imphal housing nutil ki pung ahum tari Manipuri da pau tabiri si
1: Akashvani Imphal ne ani debi na pau wajari प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे का मरील एनना हयंग खेलो इंडिया डायलॉग ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुतांग दवांग आंगनी मेरा यु भारत न सिन बा थोरम सिता लैबक सिन बथुंग बदगी ना हा सिंग ना राइजा म सुंग युन इन टेरिटोरी सिंग की जिला खुदिंग मक ते की सरुक यागनी थोरम असि की सरुक अम ओइना माय भारत वॉलंटियर सिंग सानारोय सिंग अमदि तोंगान तोंगान म मियो सिंग उना दुना वारि सानागनी लैबक असि की ममिंग लेरब सानारोय सिंग अमदि तकमान क्या पंगलक लबा सानारोई सिंग्याउना इनखलक लिब सानारोई सिंगा उनगनी थौरांग सिगी सरुक अम ओइरिबा युब संबाता जाय हिनौरिबा ना हासिंगदा मखोय मखोयने पामलिबा अमदि वाखोलोन सिंग पुथोपगी तंजा अमसु पिगनी खेलो इंडिया डायलॉग असि हिरम मंगा सानाखोन अबा विकसित भारत नसाम मुक्त युबा युथ लीडरशिप अमदि ओलंपिक एस्पिरेशन दा युम्फम ओइरगा पंगथोपनी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री निर्मला सीतारमण हाई मालेम दस हेल्थ हों की फिवम खुमा जंगसी लखली भारत छो अमी कनाडा की टोरंटो पांथोप मीफमु याद्दा श्रीमती सीतारमण हाई भारत के हजिब फिवम से मालेम पुबद चब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगटप अर्बनाइजेशन चौन मैं पीरी हाई भारत कनाडा लेनरी ही खरा सिंथानिंगाई फगलगली श्रीमती सीतारमण नुमित मरीनी खोंचता कनाडा दंगसी थुंखिबनी गृहमंत्री अमित शाहना हारी लम खुदिंगमक्त मंगजिल थानबगीदमक लैबाक असिना इंटरनल सिक्योरिटी मपांगल कंकट अनबा तंगाई फदे न्यू दिल्ली दंगारांग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कन्फरेंस लोइसिनबगी मिफमद सरुक यारदुना गृहमंत्रीना हाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत मंगलान असि मंगफावना हनबगीदमक मतिक चाबा इंटरनल सिक्योरिटी लैहनबा तंगाई फदे श्री शाहना हाय अवांग नोंपोक राइजो सिंगदा नक्साल मयाई काबनी सान चिंबगी मतांग थेंनारिब अवाब सिंग हौकिब चेही तारा कुन असिदा मतम चाने यिंछिन लमलबदी हौजिंग मायोंनारिब खुदोंग जादब सिंग असि थोकलम लय महांग मखाताना हाय नौन पुथोकिब क्रिमिनल जस्टिस लो अहुम असि मथंग चेहीदगी चपचान मथौ तोब अहुरगनी मसिना क्रिमिनल केस सिंग यामद्रबदा चेही अहुम द लुइछिनबंग मल्लगनी हौजिक डीएनएस एनडीए सरकारना मल्टी एजेंसी सेंटर एम असि हिरम कया की मतंगद नईनब याब सेंगटले भारत पुनिक सा सिजनदब लेबाकद राइजो सिक्योरिटी फोर्स नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट लिसिंगनी कुंतरु कुमापन निंथिन मथौ तौहनगदबनी इंडिया मेट डिपार्टमेंट हरी अवांग नोंपोक राइजो यावना बिहार छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की नोंपोक थम सरुक झारखंड मध्य प्रदेश ओरिसा नोचु बेंगल सिक्किमद लाब निमी इनी अकन नों चूरब याय उत्तराखंड राजस्थान आंध्र प्रदेश अंदमान निकोबर इटत लाब थाजनुमित अखा अराव अकन नुशित यावना नोंग चूगनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाई लेबाक चौखटना की खोजंग हेन शक्ति पीबी तंगाई पदे न्यू दिल्ली दंगसी दिल्ली लक्ष्मी योजना की नुपी बेनिफिशरी एप्रूवल लेटर पीरदुना हाई दरकार लेब चे चांगशिलब बेनिफिशरी मथंग थागे लुपा लिसिंगनी चम्मा मकोई मकोई बैंक अकाउंट हापजिनगनी बेनिफिशरी चनी यांकाई एप्रूवल लेटर पीखी हाई सेंफम नुपी मरुमदम लेपचब ग्नब यू की अवाट अपमें छिबद नत्रग मकोन पांथोब अत थबदी यू जी सी नेट की जून पांथोब परीक्षा की फाइनल आंसर की परीक्षा की फोल चयोल हाईदोलगनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी एना हाई परीक्षा की फोल आंसर की एन टी ए की ऑफिशियल वेबसाइट फंगनी कैंडिडेट वेबसाइट अखद

0: इबे माँ, इबे माँ, तुमने दूध पी लिया?
1: हाँ माँ, पी लिया। एक उबला हुआ अंडा भी खा लिया।
0: तो आओ अब पढ़ाई करते हैं।
1: हाँ माँ, आती हूँ। अब तो पेट पूजा भी हो गई, देर तक पढ़ाई कर सकेंगे। माँ, आज तो राजश्री भाग्यचंद्र यानी कर्ता महाराज के बारे में कुछ बातें बताइए।
0: मेरी बेटी सुनना चाहती है तो जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, पुराने जमाने में माना जाता था कि राजाओं में ईश्वर के गुण होते हैं।
1: ऐसा क्या?
0: हाँ, तत्कालीन प्रजा अपने राजाओं को भगवान के समान आदर देती थी। इस प्रकार के असाधारण ईश्वरीय गुण हमारे मणिपुर के राजा भाग्यचंद्र में भी थे, इसलिए यहाँ की प्रजा उनसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम करती थी।
1: राजा है इसीलिए साधारण जनता से अधिक गुण उनमें थे, है ना माँ?
0: हाँ, ऐसा भी सोच सकते हैं। सन 1765 में मोयरांग के राजा नुंगनांग तेलहेबर ने अवा के राजा की सहायता से कर्ता महाराज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने लोगों को सताना शुरू कर दिया। कर्ता महाराज ने कसार में शरण लेने का निर्णय लिया और पर्वतीय मार्ग से वहां के लिए प्रस्थान किया। जब वे कोहिमा पहुंचे, तब पहाड़ी निवासियों ने उन्हें शत्रु समझकर आगे जाने से रोक दिया। महाराज ने अपनी सच्चाई बताई और उन लोगों को समझाया।
2: मेरे प्यारे मित्रों, देखो, तुम लोग मेरे मार्ग को इस प्रकार मत रोको। मैं स्वयं राजा कर्ता महाराज हूं। ओह, लगता है तुम लोग मुझे पहचान नहीं पाए हो। अब मैं इन लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं वास्तव में राजा हूं। तुम लोग विश्वास कर सको इसलिए मैं इस पत्थर पर युद्ध कला का नृत्य करता हूं। देखो, इस कठोर पत्थर पर मैं अपने चरण चिन्ह अंकित कर देता हूं।
0: इस प्रकार कर्ता महाराज ने उन पहाड़ी निवासियों को अपना चमत्कार दिखाया। इसे देखकर उन लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण व्यक्ति अथवा

0: उनके शत्रु नहीं है। वहां के लोगों ने राजा को उनके गंतव्य तक जाने वाले मार्ग में काफी दूर तक पहुंचाया। इसके बाद महाराज तेखाव पहुंचे और तेखाव के राजा की शरण में रहने लगे। यह समाचार खेले नुंगनांग तेलैब के कानों तक पहुंचा। खेले नुंगनांग तेलैब ने अवा के राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और तेखाव के राजा के पास कर्ता महाराज को मार डालने का संदेश भेजा।
1: तो माँ, क्या तेखाव के राजा ने कर्ता महाराज को मार डाला?
0: आगे सुनो तो सही। यह समाचार सुनते ही तेखाव के राजा गहरे विचार में पड़ गए। एक राजा ने दूसरे राजा की शरण ली थी, ऐसे में उसे मार डालना राजधर्म और मानवता दोनों के विरुद्ध था। इसलिए तेखाव के राजा ने अपने कुछ दरबारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया। अंत में उन्होंने एक निर्णय लिया। मैतेई राजा तो गुणों के धनी है, इसलिए उनकी परीक्षा लेते हैं।
1: माँ, उन्होंने कैसा निर्णय लिया?
0: अपने शरण में आए एक राजा को मारने का कलंक भी ना लगे, इसलिए तेखाव के राजा ने एक उग्र और खतरनाक हाथी को छोड़कर मणिपुर के महाराजा कर्ता की वीरता तथा सत्य की परीक्षा लेने का आदेश दिया। यह कुछ वैसा ही था जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने सोचा कि यदि वह उग्र हाथी मैतेई राजा को मार डाले तो उन पर शरणागत राजा की हत्या का कलंक भी नहीं लगेगा।
1: एक विशाल हाथी अपनी लंबी सूंड से यदि किसी बलवान व्यक्ति को भी उछाल दे तो वह निश्चित ही मर जाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने बीमा। अब आगे सुनाती हूँ।
1: जी माँ, सुनाइए।
0: जब हाथी को पकड़ने का समाचार कर्ता महाराज को दिया गया तो यह आदेश सुनते ही उनके दुख की सीमा ना रही।
2: यहाँ कैसी समाचार है जो मुझे मिल रही है? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ली जा रही है? हे गोविंद, क्या आपके इस दास को आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा? क्या अपने देश तक पहुंचे बिना ही यहां मेरा अंत हो जाएगा? हे हरि, आपका यह तुच्छ दास आपकी शरण में आया है। मेरे लिए आपसे प्रार्थना करने की अतिरिक्त अब कोई उपाय श्रेष्ठ नहीं रहा। मैं आपके शरण में हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने प्रिय देश लौटने तथा आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए।
0: इस तरह कर्ता महाराज ने अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में स्मरण कर चुपचाप ईश्वर की आराधना की। हाथी को पकड़ने से पहले वाली रात कर्ता महाराज भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए बहुत रोए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अंत में भगवान का स्मरण करते करते अचानक उन्हें नींद आ गई।
1: माँ, श्री हरि उनके सपने में आए थे ना, या नहीं आए थे?
0: सुनो तो पहले। उसके बाद राजा को नींद आ गई। उनके सो जाने के बाद स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और साथ ही आश्वासन भी दिया।
3: सुनो कर्ता महाराज, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी से डरो मत। जब तुम विजय प्राप्त करके पुनः मणिपुर पहुँचोगे तब मेरा स्मरण करना मत भूलना। और एक बात याद रखना, मैं काइना पर्वत

0: पर कथल के वृष्ट के रूप में प्रकट होऊंगा। उस वृष्ट से मेरे उसी रूप की मूर्ति निर्माण कराकर निरूपण करो, जिसका दर्शन आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
1: इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कर्ता महाराज की भी नींद खुल गई और फिर उन्हें नींद नहीं आई। वे रात भर भगवान के उस मनोहर स्वरूप के बारे में सोचते रहे तथा भगवान द्वारा कही गई प्रत्येक बात को स्मरण करते रहे। उस रात वे बिल्कुल नहीं सो पाए।
2: सुबह हो गई। सूर्य निकलने से पहले ही मैं स्नान, तिलक धारण और अन्य नित्य कर्म समाप्त कर लेता हूँ। अब मैं भाग्य निर्णय के उस क्षण का इंतजार कर रहा हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद के बिना इस तुच्छ दास के लिए उस भरकेल हाथी को पकड़ना संभव नहीं है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ हे भगवान।
1: उधर वहां मैदान जहां भयानक हाथी छोड़ा जा रहा था, अच्छी तरह से घेराबंदी कर दी गई थी। चारों तरफ मनुष्यों का सागर उमड़ रहा था। राजा, अधिकारियों तथा मुख्य जनों के लिए मचान बनाए गए थे। सब लोग वहां एकत्र होकर उस भड़केल हाथी से मणिपुर के महाराज कर्ता को कुचलवाकर मारने का तमाशा देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों के मन में उसे देखने की उत्सुकता भी थी, लेकिन भय भी था। उस तरफ राजा कर्ता हाथ में चामर लिए ईश्वर को अपने मन में स्मरण करते हुए घेरे के अंदर प्रवेश हुए।
3: हथियार लाने की बजाय हाथ में चमर लेकर आए।
1: ईश्वर की सेवा करते समय हथियार नहीं बल्कि चमर का उपयोग किया जाता है। जिसका साथ स्वयं भगवान देते हैं, इस संसार में उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। महाराज को देखते ही वह भयानक हाथी जोर से चिंगारने लगा।
2: हे भगवान, अपने दास पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आपके बिना यह कर्ता महाराज कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आपने अपने अंग की सुगंध देखकर अपने आगमन का संकेत कर दिया। हे भगवान, आपको सत सत नमन। मैं इस भयानक हाथी को पकड़ने जा रहा हूं, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। यह हाथी मेरी ओर आ रहा है। मुझे देखते ही यह मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गया। इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह क्या हो रहा है? आपके संकेत पर मैं हाथी के ऊपर चढ़ गया। आपकी कृपा से मैं इस भयानक हाथी को आसानी से अपने नियंत्रण में रखकर पकड़ सका हूँ। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ हे भगवान।
1: इस प्रकार कर्ता महाराज ने श्री हरि की कृपा से उस बरखेल हाथी को वश में कर लिया। यहाँ देखकर देखाओ के राजा को मणिपुर के महाराज की अद्भुत वीरता और गुणों का पता चल गया। उन्होंने कर्ता महाराज की भरपूर प्रशंसा की और उन्हें भाग्यचंद्र नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है जिसके भाग्य में चंद्रमा के समान उज्जवल उदय हुआ हो।
3: तो क्या फिर वे मणिपुर लौट आए माँ?
1: हाँ, बताती हूँ।

0: उस राजा ने कर्ता महाराज की हर संभव सहायता करने का वचन दिया और अपने वचन का पालन भी किया। मणिपुर के लोगों के मनोभाव और विचारों को जानने के लिए कर्ता महाराज ने राजकीय पोशाक त्याग दी और पहाड़ी वेशभूषा धारण कर गुप्त रूप से पहाड़ी मार्ग से मणिपुर की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। अपनी प्रजा के हाव भाव देखने के उद्देश्य से वे पहाड़ी वेश में गुप्त रूप से चल पड़े। आते आते वे लैमतोन फौरूबा होते हुए खोपुम पहुँचे। लंबी यात्रा की वजह से और खाने पीने का सामान न मिलने के कारण महाराज बहुत थक गए थे। जब वे खोपुम पहुँचे तब उन्होंने वहाँ के लोगों से खाने के लिए कुछ अन्न मांगा, लेकिन वहाँ के निवासियों ने अन्न न होने का बहाना बनाकर उन्हें एक दाना तक नहीं दिया। ये देखकर महाराज का मन दुख और कलेश से भर गया।
1: माँ, वे लोग तो बहुत बुरे निकले।
0: हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लोगों को सहायता और सम्मान देना चाहिए। इस अनुचित व्यवहार से दुखी महाराज ने वहाँ से विदाई लेते समय एक अभिशाप दिया कि उस बस्ती के खेतों में लगे धान कभी न पके। कहा जाता है कि उनके अभिशाप से उस बस्ती के खेतों में लगे सभी धान कभी नहीं पके।
1: जैसी करनी वैसी भरनी। अपनी शरण में आए व्यक्ति की सहायता न करना बहुत बुरी बात है।
0: हाँ, तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल सही है। यथाशक्ति सबकी सहायता करनी चाहिए। दुश्मन के प्रति भी दया और नरम व्यवहार रखना एक उत्तम गुण माना जाता है।
1: हाँ।
0: इसके बाद आते आते कर्ता महाराज नुंगजाइबन कबोकचाय भी पहुँचे। वहाँ उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर कहा,
2: यदि नुंगजाइबन पर्वत की ढलान पर स्थित इस पत्थर पर भाला युद्ध नृत्य कला का अभ्यास करते हुए मैं अपने पद चिन्ह अंकित कर सकता हूं, तो यहां मेरी राज सिंहासन की पुनः प्राप्ति का शुभ संकेत और साक्षी होगा। यह पत्थर पर मेरे पद चिन्ह का निशान लग गया। मैंने जो प्रार्थना की थी वह अवश्य पूरी होगी। मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे प्रिय राज्य पुनः प्राप्त होगा।
0: इस प्रकार खुशी खुशी पर्वतीय रास्तों से होकर वे लमांगदोंग पहुंचे। वहां गुप्त रूप से रहकर उन्होंने सेना इकट्ठी की और देखाव के राजा को सारी घटना बताकर आक्रमण की तैयारी शुरू की। देखाव के राजा ने भी उनकी सहायता के लिए उपयुक्त सेना भेज दी। उसी समय मणिपुर में अवा की सहायता से खेलई नुंगनांग शासन कर रहा था। देखाव के राजा की सहायता से कर्ता महाराज ने युद्ध में खेलई नुंगनांग को पराजित कर दिया और भाग्यचंद्र के नाम से पुनः मणिपुर के राज सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया।
1: माँ, देखाव के राजा बहुत अच्छा है ना? उनके सहायता से कर्ता महाराज ने पूर्ण राज सिंहासन प्राप्त किया। इसीलिए मनुष्य को एक दूसरे के सहायता करनी चाहिए।
0: इसलिए तो कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है।
1: हाँ माँ,
0: आगे सुनाती हूँ। कर्ता महाराज ने देखाव के राजा से स्नेह संबंध स्थापित करने के लिए अपने प्रिय अग्रज गौरश्याम की सुपुत्री कुरंगनैनी का विवाह देखाव के राजा के साथ संपन्न कराया। और श्रीहरि के आदेश अनुसार कथल के पेड़ से श्रीहरि की मूर्ति का निर्माण कराया। उसी दिन से महाराज प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीहरि की सेवा

0: yamne mane adu oja khetri jugin ro moi chi nst graduate se nst pass to busi moi han mani ji puni mi mam le re adu mai tu mathang mathang oja sangha gi da 3 year course ki diploma ma theater wa adu ki film sumang le la loi su re du training ma loi san jare du sana ba na sum artist da yam nu su nu si adu ga puning de su kapning bhai ta matam du da ऋषि पॉइंट ले बने भाई से बाटोन का पॉइंट चुम चुम चुम चुम चुम लीला से दोल अमगी दे यार बुली ला से लीला कांगलु उम दे सो सलम दे होई फिक्स नी दे मसी की फिक्स सही अहम जि ट्रांसफर सीजन से ले त्रिंगे दि काई भी आते ओइ नारगे लक पना तरगन हयार कुंभ म म दुन मखलम नी अगर ए खंजे ए न हन दे थिएटर दे ला पनी ना सुमांग ला से ए पांचरे भान पम दे सु पांचरे पांचरे दे कना कना मसिबु कमाई तुम एबु करम का ने यार कुया दे नो रबली ला के पार्ट वन का क्वेश्चन रुन लो रे दे जा ला रे वर्ष न खल्ले बा ada ini sum tanja sarak pai tare kui ki artist ama yamba tonjam gi hemlet aba sabase ma se ma san narak de gi nu ma ina hayar kung gi bne adu ma tam tam matang matang kung gi hari ba kui ki phandam hala ko dai adu na gi kwai de gi office ting ne full loina lila do aina tam ma yau na te lak ta bu du gi mo sil la kan da aina yau gi de gi matang matang matang lak ko de gi ai ningo cha ko bu se gi cast tung de ba adu ga kon ba de de koi de ni to khre du gi ta hemle su to khre adi masa su sa ba phange adu ga ai ji ki heroine ji ki manau pa si su sa ba phang gi adu ga madu gi matang de gi de mem saib sai de gi de chap cha ba ka sam pi ra kan da si bo bo लेप्तने यौजरी हैबिटार
1: आहान बगी मोह सिनबसना वजागी ट्रायल ओइखरे माजा वजा अखोगी अफाव अफाव बखोइना ताजाबदसु खोगी इंडियागी सिंगर हाइतारे कविता कृष्णमूर्ति कासे लता मंगेशकरगी डबिंग सामी हायोजा अदगी फाउरक पनि हाय अदुना सिगी जानो उहौबा मतम सांगना लोइनरक पदुदगी उहौबदुना सोजादा तम होबजो हाइतारे वजा अदो गजाना सुसिक पनबिदो वजागी ओजा सिंगदी अमामम त ओइना ममिंग लेरबंगाक तनि वजा अदो वजागी सु लाइबक फबने हैन खनजै वजा अदो वजा थुमांग लेलागी ममांग दो जाना थिएटर यावबिरक पसि थिएटर सिद्धि माइकै अहोमजी खाजल लगा माइकै अमखक्तनी ऑडियन्स न येंग दोइसे सुमांग लीलादि माइकै मरी सि लोइन येंग कदुनि दनो जको अदा कनागो मन मसिन हेन लुई मन हेन लुई हैन बयावे ओजागी दि करम बन हेन नुंगाइ बवेकि
0: त सेंग न हाय तरग दि ए थिएटर सु यौजर एको मयाम न ड्रामा हरग खनब अदा मसि हाजे द्रंगै दैना ओजा गुरु खतंग दि पंज होगे
1: हाबी ओजा
0: ओजा आर दि गुरु जाय बुदोंबी लेगिद्रे को मतमदुदा कोइना थामगी वर्कशॉप से सथे वर्कशॉप से ओदव जपाम पहाड़ी ला पिरामिड से से पकवा अलेगे कोइ वजा जुगोल चंद्र शर्मा राय दिगो जा सुभाष रुगो मेको की कोइ वजा अमले तनो दगी ममिंग जे कौथोखरे नपी दारे अखोइ की वजा रतन थियाम अदो वजा ब्रिजेट नांगुंबा अनि बाबा बिहारी अनि हायरीबा वजा सिंह जी वजा अकोन बना थेनरी जी कोइ वजा नबो वारे पा हाई बट थिएटर की सुमांग लतापी बगी मसना है वो जासिंग जी इना मोई कोई देगी वो जासिंग देगी तम जो हुई तम जो दोनों में सी मेरे खर्च तें मंगम जरी बनी थिएटर जो अराय बनते सुमांग ला जो अराय बनते लिविंग आर्ट फॉर्म आता नहीं आई थी फिल्म का खर दिखे नहीं फिल्म की माँ की दी तो वहाँ ले फॉर्म जी तो वहाँ बनी ना तो के थिएटर के सुमांग ला गति इना तो इतना मधु खेलना बल्ले दिए ने लब जाए तो बहु मायाम ने थम्बी बिता दी ए पोम तो हुए यादे सुमांग लाते दी पोम तो हुए यादे थोप थोप कर दी माधी सीबे यादे सोयर का जो सोयर का है ना नुसीब जो आवे सुमांग लास दी मसाना ये बा अदू साबा अदा साबा ना मायाम कोई जो हिनरी साबा ना खंग भी सुमाइना अदू साबा ना मायाम ले हिनरी से सुमाइन चप्पी की तारी भावों ने सोयर जो ना पी बंग मगी आठ फोम मम ओए ते आठ फोम दी मधु खरा अवा बो इन्हें ना इन्हें थिएटर अमसुंग सुमांग लासे मसी मसिन हेली मसिन ताय हाय बजी ए आर्टिस्ट मोइने ए हाइजेनिंग दे मसी चप माना बमा की आर्ट नी अदो तोंगा तोंगान बा प्लेटफार्म तोंगा मि बवान हाय हाय बजी थमजे
1: ओजाना सोजी हबीब दा ओजागी केरिया दा यारोंग गनी हायने ति थाजे दे अदो बतांग ना यावर बदा सोई बदा की ओजा खंगना की बगे याव ब्रो ओजा
0: ती दसेंग ना याव ब्रो बनी ने उगंदा की मराय बक ता याव ब्रो बनी जी मसी मक देना स्लैंग लैंग्वेज होय बनी ने हाइजर रो कोई की yang tantina hege de bisita yang kenon tongan pura mahai madu da yang na koi ki kaujedri hei matam du da matam du angang ne adu da ju han mapas hai foreigner uganda ki mai ki hai last da adu koi thawal khemul hai ba lilas sana matam da choi adu mai am je wa no le kari nu to isbu on khale adu ga makeup um da sanga ka na ozajing da ina eta tomba ta ka itai mata ta ba flo ta ka kamai kamai ta sar ka ino hi to hul de u as ta ye nang di tam thi na ha ga da to ma ma mai jala kra tu ki wa wa no ine na to mai da koi mai kai mari gi mai kai ama gi madu gi po tu ka ta ni adu ga art de lila de drama de si arai bom ta na ti

मखल मथिल की थरुम कया संदौतु ने तहन जरिबसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंफा मसिदा ताबिरसी तोंगान तोंगान ब मणिपुर फिल्म इसै मथंग मथंग ओइना पुकनिंग हुरबा मिटफम होंग बंगम दबी महा के मिनोक तदनी पाखंग ओइबा थमोइना तुमदन मंग मंगलिबा पोथा फम खंगद लेले नुंगशी वाखलदा ओनथोक नसु मंगाउ थिखरेदको अपाम नुंगशी गे वाखल फंगलरोय दरा खलुबदसु पाखंग पुंग न पाखत चरिबनि नुंगशी बिमा गे इंजा तपचे बिमा तौदा थोइन हेन नुंगशी हले लोन यंगलपा हुरान मि यंगदनसु चाखले पाखंग थमोयसे कुदल तमजरी लम्हे लबी थमोशिना फिल्म सिदगी सबल सेमती जेंद्र की खोंजल दा राजनी कोपम न सेरेंग बा अमदी टोंबे थांगजम अमसुंग ओइनाम गीत न सेरंग बैसे

0: aduga mama webi indun memna mami tema pitarim karege wa matilere sa aina pam dabo habese ai di puning yanim dabe oi dabo minna mamane khangne mai bedo lak to lak sino par wa pamange mai bedo ste par hange khangne
1: deda
0: deda si ajumla adme kai kalai no khangne me
1: deda
0: deda bebe lang sik dolai ba
1: deda ko blai ni
0: ai ko lai ne ba
1: hoi
0: lang sik ko lai nai ro
1: hoi mia
0: na thole dolang ba
1: khoi de chamninga ga akha pakhi de chopia dro ka de bagi no la kai pakhi sanem ka dingi kai se ye
0: la kai bukhi je phabong ayam le ba adu da sum nungai ba ki sopani da kai je le kai
1: bukhri sa bosi ichem ben khoi gi thongal ma pani min hai nen bosi san ne kai ma ta khang sina ru no
0: mui ne khoi thongal ma pawara moi ma pato re bra
1: hai
0: mi mo ta ru no
1: khene ye bungo ni gi ma cha ga nang gem ne khene mi di habada lai ba pune mona sa khang na ri ba ni
0: chot asi da mo su pya da na ga sta ri ne nga kho ne ai no mui ni khoi gi thongal ma pa da khoi si so ba ga mi ne yam ngang na bra ne mui ni lu mi ni hai na bra ba
1: karan do nga ga nu imung da mi ma tele hodra ba ne
0: ba ole
1: hodra ba ne
0: ga ja tu no hey be be ga khoi hey
1: ma lu tele thelu gi
0: lu chi je di
1: lai ho di
0: ngai kho ba ngai kho la kho hey mi mu la kho
1: ba ga ga hai no
0: nang ne nang hore noi se
1: やるぞやるぞそろそろやるぞなんかそろそろあいぼいつもにこいだつるぞはいらうんええええええあいぎはいぎそろもやれそろそろみそろだんさてかいのまいとうとうまりだあいけしとうでみそろめあいかげでだあいしなげなちゃにぴねでだねかりかりべがはいばあいするなきあいよわぶだかしよべやでだんさおいでばまんまんまだあいなかじのすまてんぱみんでパリパリあいれなこだ
0: チェムにぎまらんとさがらぎ。あ、こいでだ。のみつくてんぎ。ね、こんとんぎぽくりやとぶだ。さんばんぎぬさ、ちゃんでばまかい。こいちょりばにはいなてまむぎ。やらば。あがんなん。べべなん。わりぱへんでんでるのこなん。わぽへんでるのこなん。まさすが。あ、こいでだし。いつもにぎわかだ。ぽがはいがおらざにこ。とろれいたとかんげだこ。
2: 아마 시나마로 망학도 마 빠는 토비로 하이버 시부 가이다 우드네레베 녹항드레
3: 하이 하이
2: 가이 노이네 따우도르 시바이
3: 가이다 우레 노이디 싱지 알람야이지 타마 미시디야 싹싱 놈노 쿠살람 바야드라브라 마시기 로이르브라 시네 속고디야
2: 로이디리다 암타 소우기게
3: 솔로다노 디디 속절로로 누미스 따선 기도라
2: 누미타 로이 따게 따크르스노 미 메얌레 효리 포크리 쩌보다 보이나 쿠시 로이레 효리에
3: 시자 모이래 이렇게 계속 우리 하이브는
2: 하게 아이 컴팜 강대 마땀마땀기 감나 감나 보 컴나 보 하나 보다 아이 감대 루센방 감대 이 믿기 비세
3: 또또또또또또 영원 안간 채단 또세 오랜 몽그럽주 이반이 살라게 핵소로 걸로 해 또또 마카타르노
2: 나자노 비기 마마이들 레디 베다세 노모 노모기 마칭 좀 행글에 이행 망감들이 하우딩 이행이 바 파이행이 마이비치 주팟드레 안드로기 마이비도 파이에나 하이나버지 아목딱고 위르소나 하이비치부 호레레 이행 호레레 이행네 숨테이비치부 감동시 하이리노
3: 아 시자 하우지기 마탐시 이쇼르기 죽로이 크라발라이기 죽로이 크라파 마탐니네 깨도게 이비에 마기 마마이 마미시 이비 이행 망감 살럭트레 호스피탈 안드 부비르시 깨도게
2: 하이노 하이비치부 나자노 피시 닥터 데영을라가 하똑비르기 하리브로 मखोय पाबुना फयेंगी माइबे कोबो जप मतमदा माइबे तुने हेगमा मित उद उर बदौना मचिन द सिलोक थिर प मतमदा निमित तुदे मोय पाबुंग थमोय द करी खनि खिगे यंग हलो आइ लेरिंग ददि आइ डाक्टर ददि सुगेंग यंग हलो रे
3: इंग्रे सिजा तनोवी चागी माइ थोंग से नंग छलक पतन द पिसुंग कोक छलक ले मना थाग लग ले आइ नुंगाइ थोको पेन थोक पाइबे जि गम देन हे सिजा
2: नचा नु पिने नादुर लेरगा मखोय पाबुना करम न पेन थोक तुर लेब गम गदौरी बनो अनाबन बु फिबम फजरकबा नोम नोमगि मसक फज थोरपा हेबसिबो कलमनो ओइथोकबा यागदगे अबुने नुंगाइ तिबदो मदुदगि ममा आइने सरुक जा मजा महेने नुंगाइ तिबने लेका हिस्ते लेरिब ममान ममान नबिसिना इजागि मखदाइ नाम फंगदे हैन आइने नपन तौजरुबुदगि माइरो नचियाइने फंगलिब मैसाक्सिबो
3: से तोकदोगे नंगो
2: हे सोन नचियाइने फंगलिब मैसाक्सिने नपन तौरुबुदगि माइरो
3: तोसे अंगंग जतार गमत होय नुंगाय बे हेबनी ने नंग बो
2: आइ दि हाइ छिनि करि गुम्बा आइ कोइ नि जाबु लाइ मस दे जान पत्ता दर मराय बक ठीक रबदी आइ हे सैताई सु

0: भाई नदी मान फास्ता बगिन नुवाई पे पौसी तंग मिने लाई भाई आई आई नसी से आई यू थक गए आई तुम यार भाई
1: ये रोटो भाई खबा गए खो
0: थे दरो के भाई
1: साग थक जी के दरो के साग थक जी
0: हीरो करे दियो नो भाई
1: कई भाई सुबो
2: नहीं ना लाई भाई मु
0: से तुम मु बोल बसा आई मु तो गम थक
1: भाई भाई भाई भाई भाई
3: Minerva,

0: हेलो हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर की थौरम ने ताबी ब्रा हेलो ताबी को होय, गुड इवनिंग मणिपुर की थौरम दा दोम बुता राम नोकचरी मिंग अमदी लाइफम तक पियो
1: खावेरो मुसुंदगी
0: आराम्बम कई है बमिंग दोम तंग हना हन होय दो मरुप की करम बैसै नो खुइदाना खन बिदोय सिंग असि हाय बियु
1: पांडा मामा फिल्म दो
0: होय
1: अदु दा केने जी खुमन न सत सत पदो आ दुई से द तागे
0: होय आइ खु यामबुंग न सैरेंग ब तोनी हाय बम न सैरांग बैसै से अदु दि मरुप इसै से खुदो तमजरी नुंगाइन तामिन से
1: होय

0: हेलो
1: हेलो मैम
0: हेलो गुड इवनिंग मणिपुर की तौरम थौरम दा तराम नोक चरी मरो की मिंगा मदि लाइफम तक पियो
1: हेलो मैम आई कवा पुलिस स्टेशन ले थिंग सब निंगोले मने मैम
0: होय लैमा कवा दगी
1: होय
0: होय तराम नोक चरी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और ये सफर जिसका नाम है हर सिंगार लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ स्वागत है इस कार्यक्रम में मुसाफिर तुम्हारे लिए ही ये रास्ते बिछे हैं तुम ही पर नजर धूप रखे हुए है तुम्हें ही थकन बन के रहजन कोई ढूंढती फिर रही है तुम्हारे लिए ही और हम सारे शहर में किसे ढूंढ रहे हैं सुनिए ये गीत फिल्म बैराग से

ना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

मोहब्बत कह लीजिए प्यार कह लीजिए इसका जादू ही कुछ और होता है देख के तुमको सोच रहा हूं अब तक जो देखे थे मैंने क्या वो मंजर झूठे थे क्या मेरी बिनाई अब तक कोरी थी मेरे ज़हन के एल्बम की क्या पहली तस्वीर हो तुम और इसके साथ ही गीत सुनेंगे आप फिल्म कुदरत से लता जी की आवाज में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज में संगीत कल्याण जी आनंद जी का तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का
1: दूं तुम्हें
2: हां
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: फिल्म दीवार से ये गीत सुना आपने किशोर और आशा जी की आवाज में आरडी बर्मन के संगीत से सजा।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये सफर है हर सिंगार का, जिसमें आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। उड़कर जाती एक बदली से घुटनों के बल बैठ के पर्वत ने न जाने क्या पूछ लिया। डरे हुए थे सब देखने वाले, दिल जोरों से धड़क रहा था, और सोचिए ना क्या पूछा होगा उसने। यही पूछा जो इस गीत में पूछा जा रहा है, और ये गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म मर्द से आशा जी की आवाज़ में।

इस खूबसूरत से गीत के बाद बारी तो अगले खूबसूरत गीत की है, लेकिन उस बीच में हम भी कुछ कह लेते हैं आपसे। अब देखिए ना, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब दिल मिल जाते हैं तो फिर वो कुछ और नहीं चाहता, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती।

और इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत, क्योंकि हर सिंगार का ये सफर यहीं तक। फिलहाल कुछ ही देर में प्रसारित होंगे समाचार।

0: धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन।

0: Nifty settles below 24,250. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी

0: an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़ककर 24,208 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का उछाल देखा गया. इससे पहले बाजार की शुरुआत मिलीजुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए. सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया.
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective day's low levels.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ. सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया. इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 16 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, telecommunication lost 1.3%, IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. In contrast, metal as well as commodities rose 1.4%, PSU bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,990 companies declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
1: ईद ए मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा. पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 95.41 रुपए पर बंद हुआ. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है. प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को हमें मिल रहा है. क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा गिर सकता था लेकिन DIS ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को.
2: चलो बात करते हैं आज से शुरुआत करते हैं.
1: जी,
2: आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं. लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में, फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए हैं और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए हैं.
1: जी,
2: तो क्या क्या एक माहौल है. और जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है

0: सी निफ्टी 50 वो डाउन हुए 127 पॉइंट से जी. और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है
1: जी.
0: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़ा रुचि वाला फेज है. और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी. लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं, उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी. ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है अभी, हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन कभी दिखता है उनका. और ये बात सच है, उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं. हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है, और कुछ एआई का प्ले जिसको बोलते हैं कि हमारे जो आईटी स्टॉक्स हैं, एआई इस टाइम उसमें चलन में है, पूरे संसार में एआई में चलन है. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है, और उसकी जो एआई की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं. फिर उन उसी वैल्यू चेन में आता है चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आगे प्राइवेट इक्विटी. तो ये सारा एआई का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन आईटी सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है. ठीक है, हाँ, ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन आईटी सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है
1: जी.
0: तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है. लेकिन अब क्या है कि कंसर्न्स आ रही हैं एआई के इन्वेस्टमेंट के लेके. वहाँ का जो शेयर होल्डर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी उनको क्वेश्चन, उनके दिमाग में एक तरह का डाउट आ रहा है कि जो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी उसमें कमिट कर रही हैं, उसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो एक तरह का भय का वो माहौल बना हुआ है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एआई कोई ख़त्म हो जाए, एआई इज़ हेयर टू स्टे. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक सा फेज है, वी हैव टू लिव विद इट.
1: आपने वैल्यूएशन की बात की, तो क्या भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय है?
0: चिंता की बात नहीं है, एक चीज महंगी सस्ती की बात होती है. मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम है, हमारे शेयर्स अभी भी, हमारे शेयर्स कई ऐसे हैं जो 100 पीई पे मिल रहे हैं
1: जी.
0: अब कोई आदमी 100 पीई पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो भाव में जब आप चलते हैं, मोमेंटम इतना बढ़ जाता है, तो उसमें भाव में जब आप फंस जाते हैं,
1: भावनाओं में बहना,
0: हाँ, तो ये अच्छा नहीं होता. तो वो अपना एक उनका एक प्रूडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें नहीं बैठते तो नहीं बैठते, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
2: प्रकाश जी, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग अ लॉट टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, स्पेशली टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस. नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट international crude oil prices have eased to a certain extent, we still see that the markets did not react to that. Markets, you know, normally when that happens, markets react a little positively to the sliding, you know, to the decline in the international crude oil prices. But that's not happened right now. Do you think that's also because to do with the fact that investors and markets overall are still a little wary of the situation between US and Iran, or the continuing stalemate between the two sides, and therefore the decline in or the slide in international crude oil prices is not really reflecting in a positive movement in the markets?
0: Well, definitely there's the situation in the Middle East continues to remain volatile, and you talked about the crude oil prices. Crude oil prices also continue to remain volatile. It's only today that you see a slight dip in the crude oil price in the benchmark below 90, and then immediately you see the result in the market, especially our market. And whenever you have this situation where crude oil prices soften, rupee improves against dollar for logical reasons.
2: Yes,
0: right. So the situation in the Middle East continues to remain highly unpredictable, volatile, and then leading to other geopolitical and geoeconomic. You have this tariff wall war, and the tariff wall, somebody wants to erect a tariff wall, the other wants to break it.
2: Yes.
0: So you have this situation which is not very conducive for the investment climate, so to speak.
2: So if you look at these sectoral indices on the BSE today, we see that IT fell 1% and focused IT lost 0.9%.

0: percent. Again, I'll come back to geopolitical situation. We have the US for now has paused, you know, put a pause on the release of, or rather, you know, release of the visa. They have the US has now paused the visas across all sections. And for Indian markets, or for India, you know, all those IT sector is a big earner. So do you think that the slide that we're seeing in the IT sector today, if we talk about the sectoral indices, is to do with the fact that the US has right now put a pause on visa appointments?
1: Isn't it, when it comes to IT, IT sector anyways had remained under pressure.
0: Okay. Yeah.
1: For various reasons, yes. Right? And several of the IT stocks are available even today at a very attractive price to earning ratio. Sometime you might say mouth-watering kind of evaluation. But when it comes to today's movement of IT stocks, I think it's a definitely, I'll agree with you, it's a knee-jerk reaction
0: yes.
1: to this very stringent kind of measures being initiated by the US, because after all, our entire IT paradigm is based on H-1B visas
0: yes.
1: and, you know, movement of people, movement of... So naturally, it's a knee-jerk reaction. It remains to be seen how it plays out. Hopefully, things should clear out.
2: बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है आपको क्या लगता है कि ये मार्केट को मजबूती दे रहे हैं ऐसे समय में जब तमाम बैंकिंग की जो प्रणालियां हैं उन पर भरोसा करें या ना करें ये भी बात आ जाती है और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है
1: देखिए हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
2: इंस्टीट्यूशंस
1: सिस्टम एनबीएफसीज कंपनीज जो हैं कुछ अच्छी कंपनीज हैं तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है बैंकिंग क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर तो जैसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है तो ये है बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है हमारा जो एनपीए सिचुएशन है जो नॉन परफॉर्मिंग बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है और अक्रॉस सेक्टर्स चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों मझोले बैंक्स हों छोटे बैंक्स हों कोई दिक्कत नहीं है वही एक सेक्टर है विच इज वेरी गुड
2: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया एक सवाल मेरे जहन में आ गया मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है ऐसे में ये जो चीजें हैं ये कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं
1: ये चीजें माने
2: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के क्रूड ऑयल के
1: हमारी इकोनॉमी के लिए कितना
2: जी
1: हाँ
2: क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी चीजें हम देख रहे हैं
1: हाँ।
2: इनको अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो
1: नहीं नहीं नहीं नहीं क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफ्टन हुए हैं अभी भी 90 के आसपास हैं हमारे लिए वो अच्छी चीज नहीं है हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए 80 के नीचे आए 75 पे आए तो हमारी इकोनॉमी के लिए हमारे को हमारी एनर्जी बहुत डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है ना तो ये जो निखिल जी जो है ना हमारी जो आपको गैप नजर आता है $90 हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है जो क्रूड का रेट है $90 पर बैरल इज नॉट ए कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर वी वुड लाइक इट टू कम डाउन दैट्स व्हाई वी वुड लाइक normalcy in the hormones.
0: Yes.
1: And bada zaruri hai hona hamare liye.
0: We do have a story later on in the program that we will talk about what is happening across the Strait of Hormuz. But before that, let's move on to the next story. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto, Ms. Sitharaman said, India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities

0: us. And then accordingly, countries after countries need to put up their strategies together.
1: Right.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की. ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित है. एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे. इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे. होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है. इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
0: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडिल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जाइटी का कारण तो है ही सही. तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं. तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए. ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे विश्व को इससे फायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा ना कुछ खराब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से
2: ऑलमोस्ट 6 महीने
0: हो गए. तो इसलिए लेट्स होप कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है. अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है. मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है. तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले.
2: जी
1: Prakash, you were saying that, of course, everybody expects some kind of a positive, outcome from this meeting. But again, as we were discussing, it's still a very fluid situation. What is happening in West Asia for everyone? But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and discussions on the opening of Strait of Hormuz? It's I would say a silver lining. Would you call it that?
0: Well, I would tend to agree with you to some extent, because Iran and Oman cannot do anything independent of the U.S.
1: Okay.
0: U.S. there's a huge pressure on the U.S. administration, on the U.S. government, Trump government, because of the midterm elections there. Uh-huh. People are suffering.
1: Yes.
0: Because of inflation. Interest rates are really shooting through the roof. The bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing 2 decades high.
1: Yes.
0: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense, so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a 2-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower at $80.18 per barrel when reports last came in.
2: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 242,959 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो. साथ में एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आने वाली जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी, उसमें क्या आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीजें वैश्विक घटनाक्रमों को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल है?
0: आरबीआई की मीटिंग तो अभी दूर है
2: जी,
0: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 15 दिन में 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
2: जी,
0: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है. और जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में

0: काम आता है, एनर्जी यूसेज उसका काफी रहता है। तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफी रन बाकी है और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है। तो ये तो हुआ गोल्ड का। और जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई हर चीज का जायजा लेता है क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इम्पोर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत है।
1: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices declines, Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,250. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward slide. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ माधुरी और ये सफर होने वाला है गीत मेरे मन में।

0: का जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार गीत अपनी हिंदी फिल्म से और खूबसूरत गीतों का खजाना आप सुनिएगा बिना रुके
1: बात नहीं कर

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है. विदा दीजिए माधुरी को. अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर

0: बालेनशाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेनशाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान से आपातकालीन सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart, Birendra Shah, and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा का ये सफर लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ और आज बात करेंगे उन संभाले हुए सामानों की जिन्हें हमने पूछ के किसी किनारे कर दिया है पुराना सामान संभल कर रखा है मैंने पुराना सामान संभाल कर रखा है मैंने आज भी उसमें कुछ हिस्से मेरे बचपन के भी शामिल हैं उसमें कुछ यादें मेरी जवानी की शामिल हैं उसमें कुछ खिलौने मेरे बचपन के दोस्तों के हैं उसमें कुछ यादें मेरे पुराने रिश्तों के हैं तो हम सभी जो हैं वो कुछ न कुछ ऐसा सामान जरूर अपने घर में

संभाल के रखते हैं जो वक्त के साथ पुराना तो हो जाता है कभी-कभी बिना इस्तेमाल का भी हो जाता है लेकिन हम उन्हें चाहकर भी उठा के फेंक नहीं पाते हैं ऐसी ही चर्चा आज की रात निशिगंधा के बहाने करेंगे हम और आप

हमारे घरों में अक्सर कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे कि बेसमेंट हो गया, स्टोर रूम हो गया, फिर अलमारी का वो ऊपर वाला हिस्सा या फिर पलंग के नीचे वाला बॉक्स जहां सालों से कुछ सामान चुपचाप पड़ा रहता है। धूल की परतों से ढके ये सामान सिर्फ कबाड़ नहीं होते बल्कि हमारे बीते हुए कल के जीवंत गवाह होते हैं। अच्छा, उनमें से कोई भी चीज़ हमारा फेंकने को मन नहीं करता। जब भी हम उसमें से कुछ निकालने जाते हैं लगता है अच्छा ये तो उस दिन की याद से जुड़ी थी और ये खिलौना जिसे मैं बहुत प्यार करता था ज़रूर आज इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी हम ये सोच के रख देते हैं कि शायद कल कोई इससे खेले। धूल जमी है जिन किताबों और खिलौनों पर, उन पर हमारे कभी गहरे निशान हुआ करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी हमारी कहानियाँ इन पुराने सामानों पर मिल जाया करती हैं।

शहनाई फिल्म से गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में और हम निशिगंधा के बहाने कर रहे हैं बात पुराने सामानों की। इन पुराने सामानों में कई तरह की चीज़ें होती हैं। इनमें हमारे बचपन के वो टूटे खिलौने भी होते हैं, स्कूल की पुरानी कॉपियां देख

देखते हैं और देखते कि अरे तब हमारी हैंडराइटिंग ऐसी थी और आज कैसी हो गई है। फिर फटे पुराने स्कूल के बैग भी होते हैं और उनमें कोई पुराना पर्चा भी निकल आता है। जंग लगी साइकिल जिसे लगता है शायद अब भी हम चलाएंगे। शादी ब्याह के पुराने कार्ड देखते हैं तो लगता है फलां की शादी तब हुई थी, देखो ना उसकी शादी तो उस तारीख को और उस साल में हुई थी। कोई दादाजी की पुरानी घड़ी या फिर दादी की पीतल की कढ़ाई, जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है। मेरे घर में कुछ इस तरह की चीज़ें, आपके घर में भी ऐसी ही जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। कई बार ये भी लगता है कि इन्हें फेंक दें या फिर कबाड़ वाले को बेच दें, लेकिन एक अजीब सा लगाव हमें ऐसा करने से रोक देता है। ये लगाव उस वस्तु से ज़्यादा उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं और जो यादें हैं उससे होता है, और फिर लगता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी फिर उसी मोड़ पर आ गई है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह सफर है निशिगंधा का, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ माधुरी।

फिल्म आंख में चोली से आशा जी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात कर रहे हैं उन सामानों की जिसे यूं तो हमने पीछे रख छोड़ा है, लेकिन जब भी कभी उनसे धूल हटाते हैं हम भी खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं। जब कभी घर की सफाई के दौरान ये चीजें अचानक हमारे सामने आ जाती हैं तो मानो समय का पहिया पीछे घूम जाता है। किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलटते ही हमें वो अपना बीता हुआ दौर याद आ जाता है, जब हमारी जो प्राथमिकताएं थीं और जो खुशियां बेहद छोटी और मासूम हुआ करती थीं, आज कैसी अलग सी हो गई हैं। धूल खा रही वो पुरानी साइकिल हमें बचपन के उन्हीं रास्तों पर ले जाती है जहां हम बेफिक्र होकर घूमा करते थे, और लगता है समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। काश कि हम फिर से समय के पहिए को पीछे ले जाते और वहीं फिर से साइकिल चलाते और कह पाते कि ऐ समय तू धीरे धीरे

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म कर्म से। विज्ञान की नजर से अगर हम इन पुराने सामानों को देखें तो भले ही ये क्लटर लगे, यानी घर में बिखराव या फालतू सा सामान लग सकता है, लेकिन अगर मानसिक और अपने भावनात्मक रूप से हम इन्हें देखें तो ये हमारी पहचान का एक हिस्सा होते हैं। ये चीज़ें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पहुँच गए। तो जब भी हम इन सामानों को देखते हैं तो बहुत कुछ मन में आ जाता है। इस वक्त मेरे भी मन में आ रहा है और मुझे लगता है आप भी पुराने सामानों के बीच ज़रूर कहीं खो गए होंगे और पुरानी यादों के साथ कई जुड़ी कहानियों को सोच रहे होंगे।

फिल्म नगीना का ये गीत सुना आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और फिर लौटते हैं उसे पुराने सामान की तरफ जिसे कहीं हमने सहेज कर रख दिया है और फिर जब भी देखते हैं वो पुराना वक्त याद आने लगता है। लेकिन आज का जो दौर है, यूज एंड थ्रो वाला जो दौर है, जहां चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, पता है ये पुराना सामान ना एक ठहराव का एहसास कराता है। हालांकि इन्हें सहेजने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने घर को कबाड़खाना बना ले। समझदारी तो इसी में है कि हम इन यादों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखें, पुरानी चीजों को साफ करके उन्हें फिर से या फिर रिसाइकल करके या सजावट के रूप में इस्तेमाल करके हम उन्हें अपने वर्तमान का हिस्सा भी बना सकते हैं। चीजों को एक अलग नजरिए से देखेंगे तो पुरानी चीजें भी हमारे आज से मैच करके रखी जा सकती हैं। और कई बार ऐसा सामान होता है हमारे पास जो हमारे किसी यूज का नहीं होता, तो उन्हें जरूरतमंदों को भी दिया जा सकता है। जो हमारे लिए पुराना हो गया हो लेकिन किसी के लिए वो काम का हो, तो समय से ऐसी चीजों को किसी को देने में भी भलाई होती है। और उन पुराने खतों का क्या करें जो कहीं हमने लिख छोड़े हैं और जब भी वक्त मिलता है उन्हें पलटते हैं, तो उन्हें पढ़ें और पढ़ के एक नए एहसास की ऊर्जा से भर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपका ऐसा ही कुछ सामान किसी और के पास हो।

इजाजत फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप आशा जी की आवाज में और बात हो रही है पुराने सामानों की तो संक्षेप में कह दें तो सालों से पड़े ये पुराने सामान घर के निर्जीव हिस्से नहीं हैं बल्कि हमारी सुनहरी यादों की तिजोरी है जो वक्त-वक्त पर हमें मुस्कुराने की वजह दी जाती है और हमारे सामने यादों की एक बारात गुजर जाती है इसी तरह

इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत

में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थाई आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256,70,00,000 रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वॉशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और ये सफर है गीत सुहाने का जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स आज की रात साथ हूं मैं आपके माधुरी तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे गीतों का दौर

0: बैठे।
1: ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में फिल्म मेरे महबूब से, जिसका संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म 20 साल बाद से, लता जी की आवाज़ में।

जंगली फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता जी और मोहम्मद रफी साहब के आवाजों में शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुरी ने लिखे बोल। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त समय हो रहा है 1:29:46। आप जुड़े हुए हैं गीत सुहाने के इस सुनहरे सफर के साथ।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से, लता जी की आवाज और आरडी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म हमराज से, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाज में।

गाइड फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के लिखे बोलों के साथ। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने का ये सुनहरा सफ़र। रात्रि के 1:46 और हो गए हैं पूरे 35 सेकेंड। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे लगता है कई बार सुनते रहें और बस सुनते रहें। ये गीत था फिल्म लव इन टोक्यो से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का। और अब कार्यक्रम कह रहा है कि मैं इस सफर का आखिरी गीत जो है वो पेश करूं, तो वो गीत है फिल्म पड़ोसन से लता मंगेशकर और आशा जी की आवाजों में।

और इसी के साथ सुनहरे गीतों की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है। इजाजत दीजिए माधुरी को। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और रात सुरमई लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ। तो रात सुरमई में जहां हम सुर के अलग-अलग रंग भावों के अलग-अलग रंग को समेट कर लेकर आते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रंग से जिसका नाम है खुशी।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से लता जी की, माफ कीजिएगा ये गीत आपने सुना फिल्म अभिमान से लता जी की आवाज में। और अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले ये दो लाइनें आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी, मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे।

ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश साहब की आवाज में धरती कहे पुकार से फिल्म से और अगला गीत कुछ शिकायत लिए है कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत मेरी लब पे रह जाती है आ आ के शिकायत मेरी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2:29 और हो चुके हैं पूरे 17 सेकेंड और ये सफ़र है रात सुरमई का। खुशी के गीत सुन चुके हैं और शिकायत की बारी है अब। और शिकायत में तो बहुत से शिकायतें शामिल हो जाती हैं। मोहब्बत में ही मिलते हैं शिकायत के मज़े पे हम। मोहब्बत जितनी बढ़ती है शिकायत होती जाती है।

शिकायतों की भी एक लंबी फहरिस्त तो होती है। बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं और बहुत सी ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि जितना चाहो बदगुमान होके रह जाते हैं, वो दूर नहीं हो पाती। मोहब्बत है तो फिर इस तरह की शिकायतें क्यों हैं, और शिकायतें हैं तो क्या वहाँ मोहब्बत भी है? खैर, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, और मोहब्बत में शिकायतें होती हैं और शिकायतों में मोहब्बत छुपी होती है। अब जब शिकायतों से हम आगे बढ़ जाएं तो बेवफा से वफा और वफादारों से बेवफाई भी हो जाती है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं।

0: प्यार में कौन भला बेवफा होना चाहेगा सबको अपने प्यार की मंजिल प्यारी होती है और ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म एक कली मुस्काई से लता जी की आवाज में संगीत मदन मोहन साहब का और जब बात प्यार की हो और उसमें वफा बेवफाई की हो तो जो मुकर जाए इस मोहब्बत से वही तो बेवफा होगा पर ये भी सच है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं कोई बेवफा नहीं होता
1: ना वफादारी

फिल्म शालीमार से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार के आवाज में और बहुत ही प्यारा ये गीत और इस गीत को जब भी सुनते हैं दिल से गुजर जाता है ये गीत और रात सुरमई के सफर में खुशी हो गई शिकवे हो गए शिकायत हो गई बेवफाई भी हो गई और बेवफाई के बाद क्या उठता है जी हाँ दिल में दर्द का गुबार उठता है और इस दर्द के लिए क्या कहें दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म खूबसूरत से तरत अजीज साहब की आवाज में। कब ठहरेगा दर्द, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी।

रात सुरमई का ये सफर यहीं पूरा हुआ जाता है और इसी के साथ दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थाई आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ.

कुछ रिश्ते शाम के सिंदूरी रंग जैसे होते हैं। जितनी देर रात गहरी होती जाती है, उतना ही प्रेम का रंग निखरता जाता है। किसी अपने का साथ हो तो साधारण सा दिन भी यादगार बन जाता है।

कभी-कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की नहीं होती जरूरत। नजर जिस ओर ठहर जाए, समझ लीजिए दिल ने अपना रास्ता चुन लिया है। मोहब्बत की सबसे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं लेकिन उनकी यादें बहुत देर तक साथ चलती हैं दो नजरें जब चुपके से मिलती हैं तो जैसे रात की खामोशी में कोई मीठा सा गीत बज उठता है

पुराने दौर की मोहब्बत में एक संकोच था, एक इंतजार था, और छोटी सी झलक में भी एक बहुत सारा प्यार छिपा होता था। कभी एक मुस्कान काफी थी, कभी नजर को झुका लेना काफी था, कभी नजर का झुक जाना भी काफी था। जाना ही दिल की पूरी कहानी कह देता था।

मोहब्बत हमेशा बड़ी बड़ी बातों में नहीं मिलती, कभी किसी की खामोशी में, कभी एक प्यारी सी नजर में, और कभी रात की तन्हाई में याद आते किसी अपने के एहसास में मिल जाती है। और इस सुहानी रात में बस इतना ही, छोड़ के जा रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ, जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086 0086 185 1428 4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086 139 8999 0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977 985 131 6807 और 977 970 910 7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेन्द्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव और राहत पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रेमी राष्ट्र के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इस संवाद में युवाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा गया है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म न्यू दिल्ली से, लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज़ में। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म आवारगी से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। संगीतकार अनुमली, गीतकार आनंद बख्शी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म मासूम से अनूप कौशल की आवाज में, संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलजार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म गीत गाता चल से, जसपाल सिंह और उनके साथियों की आवाज में।

अभी आपने गीत सुना फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस जी बर्मन। और अब समय कह रखे, अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले छोड़ के जा रही एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, गीत है फिल्म स्वदेश से, उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान। जल्द मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेपाल तिब्बत सीमा के भुटकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00801851429005 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए C-130J विमान से मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलिन ने बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि स्वव्यवस्थम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबेनी को 3-1 से और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आमना सामना होगा। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक जबकि प्रतीति ने 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ। गीत है फिल्म गोपाला कृष्ण से यशुदास और हेमलता की आवाज में। सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितने ही बादल क्यों ना हो, उनके पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है। दुख की बदली अगर मन पर छा भी जाए तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसे उजाले में बदल सकती है। हर नई सुबह कहती है कल जो हुआ उसे जाने दो, आज जो है उसको मुस्कुरा कर जियो।

जिंदगी में कुछ पल बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी खूबसूरती बहुत बड़ी होती है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और आसमान पर बिखरी सुनहरी रोशनी, ये छोटे छोटे पल ही तो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए आज की सुबह को कल की चिंता में मत खोइए, इस पल को पूरे मन से महसूस कीजिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, हमारे भीतर भी बदल सकता है। अगर मन में सकारात्मकता हो तो साधारण सा दिन भी सुहाना मौसम बन जाता है। आइए आज अपने मन का मौसम भी खुशनुमा रखें, चेहरे पर मुस्कान, दिल में उम्मीद और कदमों में आत्मविश्वास लेकर।